0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।
2: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC supply. License 184. 8-1-2.

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी आईएमई एडवाइजर।
6: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Radio Haji 1674.
7: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-8126.
0: ਲਾਦੇ ਫੇਰੇ
5: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यू आर लिसनिंग
3: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
4: रेडियो हांजी
2: स्टे ट्यून्ड।

0: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184812.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट

0: जो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स,
0: रेडियो हाजी 1674।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आई एम ई एडवाइजर।

सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो हांजी।

0: हाँ जी, ओए हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी रेडियो,
2: हाँ जी रेडियो,
3: रेडियो हाँ जी। 1674 समा हो चुका अज की कहानी का। अज की कहानी लिखी है गोपी सिद्धू होरां ने। एक आदमी ने कहा, मैं अपनी पत्नी दे नाल सुता पिया सी, रात नूं अचानक मेरे फोन दे उत्ते नोटिफिकेशन आया। ये किसी कुड़ी दे वल्लों मैसेज से, कोई पुरानी दोस्त। सोचा वेखा भला की कहिंदी है, कौन है। मैं रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली ते मैसेज भेजा ते पुछया कौन है। उसने अगों जवाब दिता, मैं। हाँ, मैनू पता तेरा विआह हो चुका, पर मैं अज भी तेरे नाल बिताए वो हसीन पलां नूं मिस करदी हां। ते इस मौके तेनू बहुत मिस कर रही सी, कि आपां मुड़ तों गल कर सकदे थोड़ी देर दे लई। मेरे पुराने रिश्तियां दे विच्चों ये वो कुड़ी सी जिहदे नाल बड़े हसीन ते बड़े बेहद हसीन पल बिताए ने। मैं कुछ पल चैट करनी बंद कर दिती, पक्का किया कि वोटी सुती है। ऐसे पल बंदे नूं एक अलग एहसास दे विच लै जांदे ने। मैं अपनी वोटी वल वेख्या, वह कुड़ी नींदे सुती पई सी, सारे दिन दे कामकार तों थकी टुटी, इस टाइम किसी होर ही दुनिया दे विच। जो ही मैं उसके वल वेख्या तो सोचना शुरू किया, वह कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है। इन्नी सुरक्षित वह भी एक अणजाण घर दे विच, इन्ने आराम दे नाल सुती है, शायद मेरे आसरे। वह किसी होर घर तो आ, इत्थे किसी होर घर पई है, जिते 24 साल अपने घर दे विच रह के उन्हें बिताए ने। जदों गुस्से दे विच हुंदी सी ते दुखी हुंदी सी, उसकी माँ उसके कोल हुंदी, जिस उसके कोल बैठ के वह दोबारा चंगा महसूस कर लेंदी सी। उसके भरा उसके कोल सी, जिन्हां नाल बैठ के वह हासियां खेडियां कर लेंदी सी। इहदा डैडी, इहदा प्यो इहदे कोल सी, वह कुछ लियांदे सी जदों उसनू पसंद सी, तां किन्ना किन्ना ही होर कुछ सी। सब कुछ सिर्फ मेरे लिए छड़ के आई। मन दे विच एक विचार दौड़ गया कि अपने परिवार दे विचों अपना प्यो, अपनी माँ, अपने भैन भरा छड़ के सिर्फ मेरे करके इस घर दे विच आई, जां फिर इदां कह लो कि उन्हां सारयां दी जिम्मेवारी हुण मैं निभाउणी है। यह सब सिर्फ मेरे करके छड़ चुकी है। जो ही यह सारियां गल्लां दिमाग दे विच आईयां तां मैं फोन चुकिया ते तुरंत ब्लॉक दा बटन दब दिता। मैं अपनी वोटी वाल मूंह घुमाया, उस दे नाल गल वकड़ी कस के सौं गया, क्योंकि मैं उस समय मर्द महसूस कर रहा सी। एक ऐसा मर्द जो अपनी पत्नी नाल धोखा नहीं करता, जो अपना घर दे नाल धोखा नहीं करता, जो अपने परिवार नू तोड़दा नहीं, अपने परिवार नू जोड़ के रखता। कहानी लिखी सी गोपी सिद्धू होरां ने ते साढ़े तक पहुँचाई है सुखदीप सिंह घुमण होरां ने। आस करदे हां तुसीं पसंद कीती होए। कहानी दे विच्चों सीधा सीधा ते बहुत कुछ आपां सीख लिया होगा, ते बहुत कुछ होर भी सीख सकदे हां। कमाल दी गल है, जिहड़ी घर तोड़न की कोशिश कर रही है वह भी औरत है। तो जेदा टुटना है वह भी औरत है। जिहड़ा पहला बेईमान हो रहा सी वह भी मर्द है। जिहदी बाद विच जमीर जागी वह भी मर्द है। सो कुल मिला के आपां कह लईए कि सानू हर एक नूं अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाउणी पवेगी। समाज दे विच कहिंदे ने कि बंदी जिम्मेवारी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो, सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
5: हाय हाय गोली मारे अखियों से, हाय हाय।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: वो आ किधर? हैरिस पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलेंगे।
3: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हाजी 1674।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: रेडियो हाँ जी 1674

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

0: imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: अच्छा सुनना, एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: bhi gada hamari, the weapon that I use is humility.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है, आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
1: ओम शांति।
0: लास्ट एपिसोड में सिस्टर आपने कहा था आई मुझ पे डिपेंडेंट है, मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। तो मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं बिफोर आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी लाइन मिली, लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग। लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, इट्स अबाउट डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग।

0: जैसे आपका बीइंग ब्लिस, इट्स अबाउट द चॉइसेस यू हैव जस्ट मेड एंड द वंस यू आर अबाउट टू मेक. इट्स अबाउट द थिंग्स यू चूज टू से टुडे. इट्स अबाउट द थिंग्स यू चूज टू से टुडे. इट्स अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर यू फिनिश रीडिंग दिस.
1: ब्यूटिफुल. नाउ लेट मी आस्क माई सेल्फ, डू आई एग्री?
0: अब वो चॉइसिस की बात कर रहा हूं तो मैं एग्री नहीं करूंगा.
1: लाइफ इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग, होपिंग और विशिंग.
0: एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एम्बिशन नहीं होगा, होप नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है, और विश नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी तो निरस हो जाएगी.
1: जब हम कहते हैं एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग, मतलब ये होगा तो, ये होना चाहिए, ये हो जाए मेरे साथ तो बहुत अच्छा होगा. एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग,
0: तीनों की वजह से तो मैं जिंदा हूं. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं एक्टर बन जाऊं, मैंने होप किया था कि मुझे प्रकाश मेहरा वो फिल्म दे दे लावारिस, और मैंने विश किया था कि वो चले, तो मेरी तो जिंदगी इसी पे. और आप बोल रहे हैं कि ये चीजें तीनों.
1: एंड चॉइस आपने क्या की थी उसमें?
0: चॉइस की थी घर बार छोड़ के भागा था, इस काम के पीछे लगा था.
1: दैट इज द चॉइस.
0: मेहनत की थी, इस फिल्म इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा,
1: Expecting,
0: दो साल घर से दूर रहा.
1: एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग जो तीन शब्द उन्होंने बताए, इसका मतलब ये होगा तो आई विल गेट सक्सेस, ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, ये हो जाना चाहिए मेरे साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा. डिड यू जस्ट कीप वेटिंग, एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग?
0: दिस डज नॉट मीन कि आप इस पे काम ही नहीं करोगे, खाली होप करके बैठ के मंत्र पढ़ोगे.
1: दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है?
0: मेहनत तो अपनी जगह थी.
1: मेहनत अपनी जगह थी. क्या बनने के लिए मेहनत थी?
0: एक्टर बनने
1: के लिए. तो एक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. जस्ट बाय एक्सपेक्टिंग, होपिंग एंड विशिंग नहीं बनेंगे. चूजिंग टू बिकम, यू हैव चोजन टू बिकम, आपने उस पर मेहनत की है. अच्छा, एक्टर बनना था तो मेहनत भी किस चीज पे करनी पड़ेगी? उसी पे करनी पड़ेगी ना, उसी फील्ड में करनी पड़ेगी. ये भी नहीं हो सकता था कि मेहनत किसी और फील्ड में करें एंड बन जाए एक्टर, ये भी नहीं हो सकता था. जो चाहिए, जो बनना है, तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? वहां करनी पड़ेगी. खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो व्हाट डू आई वॉन्ट टू बिकम? आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी बींग ना, तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? ऑन बींग हैप्पी.
0: पॉइंट बहुत अच्छा बोला. जैसे सिस्टम, मुझे किसी ने बोला था कि अभी आप बॉम्बे जाओगे एक्टर बनने तो खाना पीने के लिए तकलीफ हो जाएगी, तो आप ऐसे करो टेक्नीशियन बन जाओ, मतलब किसी के असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ, साथ में सेट पे भी सबसे दोस्ती हो जाएगी, मंथली इनकम भी हो जाएगी, साथ साथ एक्टिंग के लिए रोल्स भी ढूंढते रहना. मैंने बोला ये बन जाऊंगा तो वो कैसे बनूंगा? फिर उन्होंने कहा कि फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, तो वहां फॉर्म में लिखा था फिल्म इंस्टीट्यूट में कि अगर आपको एक्टिंग कोर्स में सीट नहीं मिलेगी तो आप डायरेक्शन में जाओ, आप फोटोग्राफी में जाओ, एडिटिंग में जाओ, मतलब इतने सारे कोर्सेज थे, ऑप्शन थे. तो मैंने सारे ऑप्शन काटे, एक्टिंग और नथिंग एल्स.
1: परफेक्ट.
0: परफेक्ट.
1: जीवन का लक्ष्य, क्लैरिटी, व्हाट डू आई वांट टू बी, एक था.
0: वहां क्यों थी और दूसरी जगह क्यों नहीं थी? जीने में क्यों नहीं थी? बिहेवियर में नहीं थी? बाकी चीजों में नहीं थी?
1: बट द पॉइंट इज, जहां क्लैरिटी थी, अटेंशन दिया, एनर्जी वेंट देयर, रिजल्ट मिल गया. अब यही कोई और भी कहेगा, हाँ मुझे भी एक्टर बनना है, मुझे भी बनना है एक्टर, लेकिन उतनी डिटर्मिनेशन, उतनी अटेंशन, उतनी एनर्जी अगर उसमें नहीं देंगे तो वो नहीं बनेगा.
0: मेरे क्लास में 1974 में टीचर ने एक लाइन बोली थी, आप लोग सभी एक्टर बनने आए हो, लेकिन जिसको 99.9 भी मोटिवेशन है वो नहीं बन पाएगा. ही सेड आई वांट 100% मोटिवेशन, जिसका होगा वही जाके एक्टर बनेगा.
1: परफेक्ट.
0: और एडमिशन से पहले किसी ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कहा कि हमारी जात वाला, गांव वाला है वहां का प्रिंसिपल उस टाइम पे, मैं उसके नाम चिट्ठी लिख दूंगा. तो फिर मैंने कहा अगर उस चिट्ठी के बेसिस पे मुझे मिल जाए एडमिशन, सिर्फ 8 स्टूडेंट लेते थे हजारों में से, लाखों में से, तो मैं जिंदगी भर यही सोचूंगा कि मैं तो टैलेंटेड नहीं हूं.
1: राइट.
0: तो इतनी क्लैरिटी तब थी,
1: क्लैरिटी
0: इसी चीज में थी, फील्ड में.
1: परफेक्ट ना. बट उसी इक्वेशन को भी दूसरी फील्ड में भी लगा सकते हैं ना. इक्वेशन राइट होनी चाहिए.
0: स्पिरिचुअलिटी, ये आप जो इतने एपिसोड से बात कर रही, इन चीजों में उतने परसेंट का 10% भी नहीं है।
1: बट कोई बात नहीं,
0: और 10% इच्छा भी नहीं होती मेहनत करके।
1: उसी इक्वेशन को अब लगा देते हैं इधर, उसी इक्वेशन को कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ खुशी के लिए, मेरी अपनी विल पावर है, आई विल बी हैप्पी। मैं सिफारिश से थोड़ी खुश होऊंगा फिर। इफ आई वॉन्ट टू बी हैप्पी देन वेयर डज माई कम्प्लीट अटेंशन फोकस हैज टू गो।
0: सिफारिश से मुझे सीट मिलती, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो रहता।
1: Exactly.
0: यार शायद मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ।
1: मेरी विल पावर क्या हो गई,
0: कितनी हजारों गुना बड़ी, कितना कॉन्फिडेंस।
1: यही जब हम अपनी खुशी के लिए बिगड़ लेंगे कि मेरी खुशी सिचुएशंस पर नहीं डिपेंडेंट है, मेरी खुशी अचीवमेंट्स पर नहीं डिपेंडेंट है। जिस दिन मुझे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मेरी खुशी मेरी अपनी अर्निंग है, मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी अपनी कमाई है, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ फियर, फियर कि मेरे जीवन में क्या आने वाला है, कुछ भी आए, कोई भी परिस्थिति
0: आने वाला है, आने वाला है।
1: कॉन्फिडेंस है दैट आई विल ऑलवेज।
0: अभी तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सच में पूछो तो इधर या मैं जीरो हूँ।
1: नहीं, अब इक्वेशन बहुत क्लियर है, इस इक्वेशन को अब उधर लगा देना किसी भी चीज पर जहाँ। दैट्स व्हाई इट्स,
0: मुझे क्यों नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है जो आप बोल रहे हो कि मेरे बार बार, हाँ ये तो ठीक है लेकिन वहाँ कैसे लगाऊं। मेरे मन में यही आ रहा है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बात तो नहीं बोल रही है सिस्टर। ये
1: आपने एक बहुत ब्यूटीफुल जो थॉट पढ़ी है ना अभी, इट्स नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग। क्योंकि ये एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग जब है तो सारी पावर किसको दे दी,
0: दूसरे को,
1: किसी दूसरे को, सिचुएशन को
0: पावर दे दी तो मैं हो गया कमजोर।
1: एब्सोल्युटली डिपेंडेंसी, जहां डिपेंडेंसी आएगी वहां फियर आएगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं। अब सेकंड लाइन इट सेज इट इज अबाउट डूइंग, बीइंग एंड बिकमिंग। इट्स
0: कैन यू एक्सप्लेन दीज थ्री वर्ड्स,
1: सी द थ्री वर्ड्स, एक्सपेक्टिंग होपिंग विशिंग।
0: ये तो आपने बताया,
1: पावर कहां गई, बाहर
0: दूसरे के हाथ।
1: डिपेंडेंसी किस पर गई,
0: नहीं परिस्थिति। साथ ये बोलना जरूरी है सिस्टर, पावर गई और मैं कमजोर हुआ।
1: एक्चुअली ना, अगर मैंने आपको पावर,
0: समय उस समय में
1: जैसे आपने पिछली बार कहा शूटिंग ही नहीं हुई सारा दिन तो मैं डिस्टर्ब हूंगा ही ना, विच मीन्स मैंने पावर किसको दे दी,
0: शूटिंग के होने पर,
1: परिस्थिति को, सिचुएशन को। एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू सी बिकॉज वी डूइंग इट एवरी डे। हम पावर किसको दे रहे हैं, even when I leave my house first thing in the morning, I'm hoping there will be no traffic jam on the road. मैंने power किसको दे दी, क्योंकि अगर traffic jam होगा मैं late तो पहुंचूंगी is one part of the thing, लेकिन traffic jam होगा I get irritated. मेरे पास अपनी power नहीं है, मेरी खुशी किस पर dependent है, situations और लोगों के ऊपर। That is expecting, hoping and wishing. दूसरी line, doing, being and becoming. ये तीनों faculties किसकी है, मेरी। इट्स अबाउट चॉइस।
0: घूम घूम पे मेरे पे आ जाते हो,
1: है ही सारा खेल वहां। अगर मैंने कहा ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, ये अच्छे होंगे, ये ठीक से बात करेंगे,
0: आप मेरा... तो ब्लेम करने का मौका ही नहीं दोगे कि मुझे किसी को
1: ब्लेम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्वेशन ही नहीं वर्क करती है। बच्चा पास हो जाएगा आई विल बी हैप्पी, बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा आई विल बी हैप्पी, करियर अच्छा होगा आई विल बी हैप्पी, प्रोफेशन में सक्सेस आई विल बी हैप्पी, कोई मुझसे प्यार से बात करेगा आई विल बी हैप्पी, कोई मुझे रिस्पेक्ट देगा आई विल बी हैप्पी। विच वे इज द इक्वेशन फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इन, वो होगा तो आई विल बी हैप्पी। तो पावरफुल कौन, सिचुएशन एंड पीपल, मी टोटली डिपेंडेंट ऑन इट। हियर इट कम्स एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग, बिकॉज नाउ आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग होपिंग एंड विशिंग दैट एवरीथिंग आउटसाइड शुड बी नाइस, because
0: then
1: when
0: I will be nice,
1: then I will be happy. अगर शूटिंग पूरा दिन अच्छी चलती तो मैं खुश होता, लेकिन शूटिंग हुई नहीं ठीक से तो हाउ कैन आई बी हैप्पी, विच मीन्स माई हैप्पीनेस।
0: तो यही सुन रहे, घर में परिवार शांत रखेगा तो बाहर भी शांत रहेंगे, घर में अच्छा रहेगा तो बाहर भी अच्छा रहेगा। और उससे भी जब हम छोटे थे, जब गिर के रोते थे तो माँ बाप बोलते थे चींटी नहीं गड़बड़ की, चींटी को मारते माँ टेबल ने लगाया मार के, चलो टेबल को दो थप्पड़ मार गए, टेबल तो कितने गंदे है, सुरेश को ऐसा किया तो चलो हम लोग खुश हो जाते।
1: क्या सिखाया
0: हमको, यही सिखाया कि इसकी वजह से हुआ ना, तो टेबल की वजह से तो तुमको चोट आई, चलो टेबल पे को मारो।
1: It was not taught to us only right from the beginning. हमें सिखाई नहीं गई ये बात।
0: तो पसंद भी तो आती थी, सिखाई नहीं सिखाई,
1: क्योंकि हमेशा
0: उम्र में भी
1: ब्लेम करना तो पसंद आएगा। हमारी इक्वेशन क्या बन गई जीवन की, सिचुएशन क्रिएट्स माई स्टेट ऑफ माइंड, परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को क्रिएट करता है, एंड वी लिव्ड आवर लाइफ लाइक दिस. दैट्स व्हाई दोस थ्री वर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, एक्सपेक्टिंग, होपिंग, विशिंग फॉर सिचुएशंस टू बी नाइस, फॉर पीपल टू बी नाइस.
0: मैं आपको एक बात बोलूं, आई मीन आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपकी अगेंस्ट बोल रहा हूँ. चलते चलते हमारा एक्सीडेंट हो गया था. अब इतनी बुरी परिस्थिति, हाथ में मेरे भाई की डेड बॉडी है, क्या परिस्थिति अच्छी लगती है क्या? आप कैसे बोल सकते हो ये बात?
1: राइट.
0: सारी कौन सी जिंदगी, किसका जीवन परिस्थिति पर डिपेंड नहीं है?
1: परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है.
0: नहीं है, बिल्कुल नहीं है.
1: जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हो गया,
0: और परिस्थिति का इफेक्ट सबको होता है.
1: परिस्थिति का इफेक्ट हर एक पर होता है. लेट्स लुक एट इट हाइपोथेटिकली. अभी जैसे आपने कहा एक सिचुएशन हम 10 लोगों पर आ जाए, यहाँ पर एक ही परिस्थिति, इवन लेट्स से कि शूटिंग नहीं हो रही थी, ये भी तो एक सिचुएशन ही थी, और हम
0: हर एक का रिएक्शन अलग अलग. यही बोलना है आप चाह रहे हैं ना?
1: बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये इम्पोर्टेंट नहीं है. परिस्थिति का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है जब परिस्थिति एक होगी, और परिस्थिति का इफेक्ट

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: Hi, this is Arbaaz Khan and you're listening to Hanji Radio 167.

0: जो हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जस्ट स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
5: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
0: रेडियो हाजी 1674।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं दिन थोड़ा वधिया जा रहा होगा। चढ़दी कला च होगे चेहरे ते होगी मुस्कुराहट, जेकर नहीं तो आओ सब तो पहला